0: system that it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on, all the way.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: बानवे इशारिया नौ और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 3927104। नियत खाव नियत छू इना हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: حم

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: समर नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 17/5/2026 का प्रोग्राम है, तो इस वक्त लाइव है, हमारे साथ है मास्टर याकूब साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डेनमार्क में चेयरमैन है। इस वक्त वो पाकिस्तान जो गए हुए हैं, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है या तो बैरिस्टर साहब के मिलने गए हैं, या मियां साहब को मिलने गए हैं, या अपने निजी दौरे पर गए होंगे। वो मां साहब जाते रहते हैं अक्सर। मां साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: मां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो मैं ईद का मतलब मौका है, ईद कुर्बान का, तो मैं हमेशा इधर आता हूँ और आकर कुर्बानी करते हैं, तो दिल खुश होता है। क्यों, ईद के मौके पर ही लोगों को मिलने का मौका मिलता है, अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। इंशाल्लाह ईद करीब है, तो इंशाल्लाह एक दो जानवर खरीदेंगे। मैं एक बैल खरीदता हूँ, दो बकरे खरीदता हूँ, तो मजे से अपने घर में इधर कुर्बानी होती है। दोस्त यार आते हैं तो सारा दिन बड़ा मशहूर गुजरता है, दोस्त यार भी सारे इंतजार करते रहते हैं कब मैं घर आऊँगा, आप सारे खुश हैं। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ईद कुर्बान जाए वो इंशाल्लाह।
1: आप पौधे लगाते हैं, पौधे लगा के आ जाते हैं, उसके बाद बकरियों के लिए आप अच्छे अच्छे फ्रूट बकरियां खाती हैं, इसी तरह आप अपनी पार्टी के लिए पौधे लगाते रहते हैं, और सारी ज़िंदगी आपको हो गया है अपना मुस्लिम लीग नून में, तो सारी ज़िंदगी गुजर गई है आपकी, और पक्के जिसे कहते हैं पक्के सच्चे मुस्लिम लीग के हैं आप।
2: जी राज साहब, इंशाल्लाह पौधे मैं लगाता हूँ। अब मैं अपने घर के गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ पर अमरूद के पौधे हैं, माल्टे हैं, और बड़ा लुत्फ आ रहा है, जामुन है, तो बड़ी ना छाँव अच्छी है, परिंदे भी चहचहा रहे हैं, तो मैं सुबह इनका पानी का बंदोबस्त करता हूँ, तो बाजरा भी डालता हूँ, तो मैं सारा दिन इधर रहता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ, तो ये एक बात होगी। दूसरी बात है कि इंशाल्लाह पार्टी के लिए मैं सारी उम्र काम की है, और इंशाल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह अगले जान को भी जाऊँगा, क्योंकि पार्टी को मैं पसंद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं मेरे बेहतरीन, मतलब है कि ये कह रहे हो कि मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने बड़े काम किए हैं जो सब लोग जानते हैं, तो वो भी पार्टी के लिए मुखलस हैं, तो हम इंशाल्लाह पार्टी के लिए मुखलस हैं। ना उदों की जरूरत है, ना कभी कभी किसी को बड़े लोगों को मिलने की ख्वाहिश की है, और ना ही कभी हमने कोई काम लिया है, ना ही कभी हमने कोई पैसा लिया, बस सिर्फ मोहब्बत से, शौक से। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी है पाकिस्तान के लिए मोहब्बतर पार्टी है, पार्टी के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो इसलिए मैं इस पार्टी को पसंद करता हूँ।
1: साहब, आप और मोहतरम बेग साहब पार्टी का एहसासा हैं, पहले मास्टर अपना मलिक साहब होते थे, आप उनके साथ होते थे, बेग साहब साथ होते थे, अब आप और बेग साहब जो हैं पार्टी का एहसासा हैं।
2: इंशाल्लाह हमने पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, बेग साहब जो हैं वो भी मेरे बहुत मुखलिस हैं, और हम का वो जो है
1: जी, बेग साहब कप्तान है जी, कप्तान है वो,
2: वो हमारे कैप्टन हैं, तो इंशाल्लाह वो बहुत सा काम कर रहे हैं। अब उधर 28 मई आ रही है, तो इंशाल्लाह वो तैयारियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो मनाएंगे, मैं तो उधर नहीं हूँगा, लेकिन आप सब मिलकर आपको भी दावत दी, आप तुम्हारे क्योंकि इसलिए नहीं कि आप रेडियो पर बैठ जाए, क्योंकि आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, और इसलिए हम आपको बहुत इज्जत देते हैं, और हम समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपने बहुत अरसा, एक लॉन्ग अरसा कौम की खिदमत की है, आपने रेडियो पर जो टाइम दिया है उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, हम हमेशा लुत्फानंदोज होते हैं, हम उधर से उर्दू सीखते हैं, सियासत सीखते हैं, बातें सुनते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है, आप भी एक माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और इंशाल्लाह आप रहेंगे, और इंशाल्लाह उन लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि जो आपने, ठीक है जहाँ भी इंसान काम करता है तो कुछ चलो आमदन थोड़ी बहुत होती है, गुजारा इंसान करना, लेकिन आप फुल टाइम दे रहे हैं और बहुत सा कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत हो रही है, उनको उर्दू लैंग्वेज आ रही है, ये भी एक पढ़ाने का जरिया होता है उर्दू लैंग्वेज। इसके अलावा आप सियासत पर बात करते हैं, दैनिक सियासत से हमें हमेशा मतलब है कि वाकिफ दिलाते रहते हैं, पाकिस्तानी सियासत के बारे में बात करते हैं, तो आप मेरे ख्याल में एक अनपढ़ आदमी भी आपका रेडियो सुनकर बहुत कुछ सीख जाता है, इसलिए आपके रेडियो पर मुख्तलिफ दानश्वर आते हैं, सियासतदान आते हैं, मजहबी रहनुमा आते हैं, तो सब लोग आते हैं, और अगर कान सुनने वाले हूँ अगर कान सुनने वाले हों और दिल लग जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है बातों से, अच्छी बातों से। तो आप हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसलिए हम आपको एज ए खसूसी मेहमान खसूसी बताते हैं अपने प्रोग्राम में। आप बहुत काम कर रहे हैं और हम तो एक एक स्पेशल काम कर रहे हैं और आप जो है सब लोग का लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे लिए मतलब है कि बहुत हम आपकी इज्जत करते हैं, काबिल इज्जत हैं राज साहब। तो
1: आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी जरा नवाजी, आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मुल्क और कौम की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। मां साहब आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप बहुत दूर बैठे हुए हैं तो पूरी फैमिली को हमारी तरफ से सलाम कहिएगा और जल्दी आप वापस आ जाएं।
2: बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह एक बार जल्दी वापस आऊंगा और सबको मेरे बहुत बहुत सलामी अकीदत पेश कर देना,
1: पेश की ईद मुबारक।
2: थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे मास्टर याकूब साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के यहाँ डेनमार्क में चेयरमैन हैं और उन्होंने ये अलम उठा हुआ, बेग साहब हैं, तो ये सरमाया है पार्टी का। बाकी लोग भी जो हैं पार्टी के वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी काम कर रही है, चूँकि मुस्लिम लीग के लिए वो काम कर रहे हैं तो सभी काम उसी एक ही जमात के लिए काम कर रहे हैं, एक ही उनका लीडर है। सामान्य नाज़रीन हमारे साथ साथ रहेगा, हमारा किसी से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 17/5/2026 का प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ कोआर्डीनेटर मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बेग साहब, हमारे पास खबर थी कि आप जो है 24 तारीख को मार का हक और ये 28 मई वाला प्रोग्राम मना रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है?
2: इंशाल्लाह ताला, तो आपको हमने कबल उस वक्त इत्तला भी दी हुई है और आज भी बता रहे हैं आपके तोसे से सब सुनने वालों को कि हमारा प्रोग्राम जो मुस्लिम लीग नून के जियाले हैं सबके लिए खुली दावत दी गई है, सबको वेलकम इश्तेहार भी आने वाला है। आजकल मैं इंशाल्लाह ताला आपको सवाल करूंगा, बताऊंगा आपको कि हमने जो 24 तारीख रखी है इंशाल्लाह।
1: लेकिन बेग साहब, ये दावत आम तो नहीं है ना?
2: ये मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए है, चाहे वो हमारे मेंबर हैं नहीं है, जो मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल हैं उन लोगों को वेलकम करते हैं हम।
1: तो चलें बेग साहब, आपने अच्छा किया ये बता दिया लोगों को, ताकि बाज दफा होता है ना ये दावत का फिर उसे होता है मिसफस तो हो जाते हैं, तो आपने अच्छा किया इस बात को क्लियर कर दिया।
2: मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले, मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल, मुस्लिम लीग नून के जियालों के लिए सारे रास्ते खुले हैं, वेलकम, आए आके अपने ख्याल का इजहार करें और हमारे साथ मिलकर खाने खाएं इंशाल्लाह।
1: बेग साहब, आखिर में कोई मैसेज देना चाहें?
2: यही मैसेज है कि जो आप, मैं कह रहा हूँ कि 24 तारीख को शाम 5 बजे रजाक साहब के रेस्टोरेंट वेलबी 152 पे हम प्रोग्राम करते हैं, हमेशा वही करते हैं और अब भी वही करेंगे। और जितने भी मुस्लिम लीग जियाले हैं सबको वेलकम, आई वेलकम।
1: तो बेग साहब, मास्टर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं?
2: मास्टर साहब पाकिस्तान गए हुए, देखे मेरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जियालों को बहुत बहुत सलाम। 24 तारीख शाम 5 बजे तशरीफ लाए रजाक के रेस्टोरेंट में, जो कि वेलबी बाय नंबर विसले बाय नंबर 2 अल्ट्रास पे है।
1: बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। समय नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, कोई भी राय देना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: इलेक्टेड विद 182 आउट ऑफ 193 वोट्स इन जून 2024, जो पाकिस्तान जीता है. पाकिस्तान इज अ टॉप कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, हैविंग डिप्लॉयड अवर 150,000 पर्सनल इन 41 मिशंस अक्रॉस 23 कंट्रीज सिंस 1960. And what is our principal position? Pakistan advocates for the self-determination of Jammu and Kashmir and maintains a firm stance against adding new permanent member to the Security Council. Pakistan ka bahut main leading position role raha hai, jiski wajah se hume peacekeeping ke liye include kiya gaya tha. America ne hume aise hi awaaz nahi lagayi thi, क्योंकि हमारी यूनाइटेड जो है नेशंस, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी कि अमेरिका ने हमें आवाज इस बात पे लगाई थी अपने और ईरान के मसले के दरमियान. और 193 वोट जो थे उसमें से हमने, आप देखें, 182 वोट्स लिए थे. तो ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी अमेरिका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान की बहुत तगड़ी पोजीशन है यूनाइटेड नेशंस में. अगर कोई पाकिस्तान को आवाज लगाता है तो उसके पीछे यही हमारा रीजन है कि हमें वर्ल्ड वार्स में आवाज लगाई जाती है पीस कीपिंग के लिए. जी राजा साहब,
1: बहुत शुक्रिया जैनश. ये तो सवाल जो थे मेरे लिए बड़े मुश्किल जो है सवाल करना इसलिए था कि आपको जवाब देते वक्त, चूंकि आप भी आर्मी का हिस्सा हैं, तो सारे सवाल कोशिश की है हमने आर्मी के आगे पीछे ये सारे घूम रहे थे, तो ये बड़ा मुश्किल जो था आपसे जो है बात करना और आपको जवाब देना भी. डेफिनेट आपने एक्यूरेट जवाब देना होता है, कानून कायदे जो कुछ आइन में लिखा होता है. लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, जरा मैं थोड़ा सा हटके कोई सवाल करूँ.
0: श्योर श्योर, डेफिनेटली राज साहब. बल्कि हमसे कभी किसी ने जिंदगी में इतने कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल नहीं पूछे, और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि आर्मी के वाले से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल कोई नहीं पूछता. ये बल्कि आपकी बहुत बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू है आपका, कि आपने हमसे इतनी बारीकी में सवाल पूछे हैं कि सुनने वालों को भी डिफरेंस पता चले कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में, आर्मी और पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की डिफरेंस क्या. जी जी, जरूर सवाल करें. अब तो आपका इंटरव्यू मजे का लग रहा है.
1: देखें जी, अब बात करते हैं, टैक्सेस की बात होती है, पाकिस्तान में भी बहुत होती है. यहाँ हम टैक्स देते हैं, जो टैक्स की हमें सहूलियात मिलती है, तो मैं अगर गिनना शुरू कर दूं तो आप जो है वो सारा टाइम तो इसी में गुजर जाएगा. हम जो टैक्स देते हैं उससे हमें बहुत सारी सहूलियात मिलती है. जो भी आप कह रहे हैं, अस्पतालों की बात करें, सड़कों की बात करें, पार्कों की बात करें, बसों की बात करें, ट्रेनों की बात करें, नैम कोई भी बात करें, तो उसमें जो टैक्स की सहूलियात मिलती हैं, तो वो गिनने लगूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां भी टैक्स दिया जाता है, तो जरा फर्क हमें जरा बताएं कि आप जरा टैक्स के निजाम के बारे में बात करें अगर करना चाहें तो.
0: राजा साहब, जरूर हम करेंगे. सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम क्या है, क्योंकि जिस मुल्क में टैक्स का जैसा सिस्टम होता है उसकी सहूलियात भी वैसी होती है. First, let me define you about the Pakistan tax system. It's a complex three-tier structure managed primarily by the Federal Board of Revenue for national taxes. Number one, income tax. Number two, sales tax on goods. Number three, custom duty tax. And number four, provincial authorities for services and property tax. इसी में custom duty tax आ जाता है. देखें, चार खातों में हम सिर्फ tax लेते हैं, ठीक है. अब जब चार खातों में एक मुल्क tax ले रहा है, तो वो फैसिलेशन भी आपको उन्हीं खातों के मुताबिक ही देगा. अब होता इस तरह है कि यहाँ पे जहालत की मैं कहती हूँ इंतहा इस लेवल की है कि एक मिनट में कंपैरिजन कर लेते फॉरेन कंट्रीज के साथ. वहां पे तो सिर्फ सांस लेने का टैक्स लिया नहीं जाता ना, बाकी तो सारे टैक्सेस लिए जाते हैं. और ये भी एक जो फॉल्स थ्योरी चल रही है लोगों के जहन में, जो थर्ड क्लास किस्म के कुछ सियासतदान है जिन्होंने अपनी दिहाड़ चमकाने के लिए एक थ्योरी डाली हुई है कि जी जो अवाम के टैक्स के पैसे हैं उसे सरकारी लोग खाते हैं. ऐसा नहीं है, सरकारी बंदा भी टैक्स देता है, अकोमोडेट होता है, और टैक्स आर्मी पर्सन भी देता है. और अगर हमें टैक्स नहीं देना है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती हमारी आवाम, तो जंगलों में चली जाए, जानवर फाड़ के खाए, मत टैक्स दे, दफा हो जाए जंगलों में, कोई जरूरत नहीं है सिटीज में रहने की. गांव कस्बे के भी लोग टैक्स देते हैं, किसान भी देता है. एक आर्मी वाला किसान का ही बचा होता है, जो जिसका बाप टैक्स देता है वो कमाने लगता है, वो भी टैक्स देता है. एक गवर्नमेंट भी जो बंदा होता है, इंसान का ही बच्चा होता है, उसकी भी सैलरी से टैक्स डिटेक्ट होता है. तो जब आप फैसिलेशन लेंगे, अकोमोडेशन लेंगे, तो आपने टैक्स देना है, चाहे आपका प्रोफेशन जो मर्जी हो. तो ये भी एक जो फॉल्स किस्म की एक स्टेटमेंट है. कि हमारे टैक्स के पैसों से आर्मी पलती है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामने नाज़रीन, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करें, जहाँ से भी हमें मिलती हैं। छुट्टी वाला दिन है तो इस वक्त साबका पार्लियामेंट के मेंबर एक्टिविस्ट मलिक सिकंदर सदीक, जो मौजूदा सिटी काउंसलर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक सिकंदर, आपको एक बार फिर अदार आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: सिकंदर, आप हमारे सामान नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है पार्किंग के हवाले से। अक्सर मैं सबसे बात करता हूं, आपसे तो ज़्यादा बात करता रहता हूं, जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं पार्किंग की बात करता हूं, आप मसाइल उठाते रहते हैं और दबंग तरीके से पार्लियामेंट में भी उठाते रहे और आप कम्यून में आप बैठे हुए हैं, तो ज़रा पार्किंग के बारे में कोई अगर खबर है तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें।
2: देखें, बात यह है कि जो कोबर हैगन में आते हैं या रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं या जिनके पास गाड़ी है, वो इस बात से बाखूबी, उनको इस बात का पता है कि यहाँ पे कोबर हैगन कम्यून में पार्किंग ढूंढना ये किसी वो क्या उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से वो कम नहीं है, इस ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो मैंने जब ये एक इशू है और मैंने इसलिए इस इशू को पे जरा रिसर्च किया, फोकस किया अपनी टीम के साथ, और इस पे बड़ी दिलचस्प सी एक सूरत हाल हमारे सामने आई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और हमें ये पता चला है, हमने जब फिगर्स एंड फैक्ट्स देखे हैं उसमें हमें ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे कोपेनहेगन में लोग हैं। और वैसे मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आप देखें कि इस

0: उसके तरफ दूसरी जो पार्टी है वो है कंसर्वेटिव लिबरल एलियंस वगैरह, ये इनका दिल है कि पूरे शहर को एक पार्किंग बना दो। मैं समझता हूँ ये दोनों गलत है। इंडिपेंडेंट ग्रीन्स फ्री कॉयर ने, हम लोगों ने एक, आप समझ लें एक हिकमत अमली के तहत एक हमने एक ओपिनियन और एक स्टैंड लिया हुआ है कि पार्किंग जो होनी है वो गद्दारी पार्किंग होनी चाहिए, ना एक सारे शहर को पार्किंग बना दो तो ना एक सारे शहर से पार्किंग खत्म कर दो। या को से मम्मा तो उसमें अच्छा तो मुझे सॉरी तो उसमें हमने ये कहा है कि जिनको जरूरत नहीं है गाड़ी की और जो बहुत कमाते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं पेमेंट करें, और ज्यादा जो है उन पे आप उनकी पार्किंग पे गाड़ियों पे फोकस करें, तो जो वर्किंग क्लास है उनको जो है सहूलत दी जाए और उनके लिए पार्किंग की बेहतरी जो है वो लाई जाए। तो इसलिए मैंने देखा है कि कई सालों से ये कोपेनहेगन कम्यून में ये पार्किंग पॉलिसी जो है ना ये ऐसी है कि ये जो वर्किंग क्लास है उसको उसके लिए सजा बन चुकी है। तो मैंने इस वजह से तलब किया है जो कोपेनहेगन की मेयर है लीन पावरफुल इंस्टॉलेशन की छिकनी के मिलियो की जिसके अंडर ये पार्किंग आता है, उसको मैंने थर्सडे के दिन तलब किया हुआ है और वहां पे मैं उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा और उस पे बेसिकली मैंने उनको इस बात पे तलब किया हुआ कि आप बताएं कि जो आप लोग कई सालों से ये पार्किंग पॉलिसीज रखी हुई है इससे क्या जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आया है, आपने कभी इस पे फोकस किया है और हम आगे क्या कर सकते हैं कि इस पार्किंग के इशू को गद्दारी पार्किंग की पॉलिसी जो है वो हम अपनाएं। और ये बहुत बड़े मैं समझता हूँ बड़ी दिलचस्प डिबेट होगी।
1: सिकंदर आपने चूंकि उनको एक जो है वो सियासी तौर पर जो एक होता है प्रोटोकॉल तलब किया हुआ है, लेकिन इस बात को भी आप नोट कीजिएगा ये वेस्टर्ब्रो की गेट पर था जहाँ नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं इनके नीचे बहुत बड़ी पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है, लेकिन वो बिल्डिंग के लिए पार्किंग नहीं होती, वो उनको महंगी देते हैं इसलिए वो बाहर पार्किंग लेकर गाड़ियों को बाहर पार्क करते हैं। अगर आप पार्किंग में देखें तो बाहर टेस्ला गाड़ी पार्क हुई होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क की होती हैं और उनके अंदर हैंडीकैप जो है स्किल्ड पड़ी होती है। मुझे ये समझ नहीं आती जो बार बने होते हैं उनके बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां होती है, रात 12 बजे 1 बजे तक उस पर कानून की पाबंदी ये लोग नहीं करते। तो ये लोग ये या तो ये सरमायादार हैं सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व की है बात और मैं असल में अब ये हम एक प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं और इसमें मैंने सबसे पहले उनको तलब करके मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताएं ये पार्किंग के सिलसिले क्या है। इसमें मुझे जो हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि हम अब एक प्रेशर क्रिएट करेंगे इन पार्टीज पे और मेयर पे और हम इससे कहेंगे कि आप जो है ये जिस तरह के आप बता रहे हैं, मैंने तो अभी आपको बताया कि ये एल पीला और जो होती है ये खाली खड़ी होती है रात को, इस पे फिर भी आप पार्क नहीं कर सकते। आप अभी बता रहे हैं कि इन्होंने जो नए मकान बनाए हैं फ्लैट इनके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको अगर हम
1: वो रात को बिल्कुल खाली तकरीबन खाली होती है वो
0: बिल्कुल, तो हम अगर इनको एड्रेस करें तो काफी सारी पार्किंग जो है वो निकल सकती है। तो इसीलिए हमने अब मेयर से सबसे पहले सवाल ये है कि मेयर खुद बताए क्या वो समझती है कि ये पार्किंग के जो पॉलिसी इन्होंने रखी है ये सही है और अब आगे क्या किया जा सकता है इस चीज को बेहतर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सच्ची जो बात है कोपेनहेगन कम्यून में ये बहुत बड़ा इशू है, फर्क सिर्फ ये है कि ये उन लोगों को के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो वर्किंग क्लास है जो शायद ज्यादा उस तरीके से ज्यादा कमाते नहीं है, उनकी फिर आवाज भी कोई नहीं है क्योंकि जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं कोपेनहेगन में उनका अगर आप वोटर देखें तो ये काफी जो रिच लोग हैं जिनके अपने मकान हैं जिन जो अच्छा कमाते हैं ये जो अकादमी का आप कह लें ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट ग्रीस में फ्री कॉर्नर में हमने ये तहैया किया हुआ है पहले दिन से और अब हम कोपेनहेगन कम्यून में भी है तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हम आम लोग जो है हम उनकी आवाज बनेंगे। इस पार्किंग के इशू में इन आम लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हम अब कम्यून में आए हैं तो हमने अब इस चीज को उठाया है और हम इंशाल्लाह ताला इस पे मजीद काम करेंगे और इस पे हम जो आम लोग हैं जो वर्किंग क्लास है उसकी हम नुमाइंदगी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो थर्सडे के दिन ये डिबेट होगी। मैं आपको राजा साहब एज अ चेयरपर्सन इदारा आपकी आवाज आपको दावत देता हूँ कि आप आए और आप ये डिबेट देखना, ये बहुत दिलचस्प डिबेट होगी और इस पे बहुत जो है मैं समझता हूँ कि वहां पे

0: दिलचस्प डिबेट होगी, क्योंकि ये एंगल किसी ने कभी उठाया नहीं है। या तो वो जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ
1: सिकंदर
0: ये
1: एक और
0: दो,
1: बात भी कर लें कि जो लोग टाउन हॉल में आते हैं इनवैलिड पार्किंग के लिए, वो तो थोड़ी देर के लिए टाउन हॉल काम के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो पार्किंग खाली पड़ी होती है उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए, चाहे जाए कि जो कम्यून में होते हैं उनको इजाज़त होती है।
0: नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस तरह की बहुत सारी जो है ना छोटी छोटे रास्ते हैं पार्किंग को बेहतर करने के लिए, यानी कि गाद फैरी। ये नहीं है कि हमें ये भी नहीं, हमने क्लाइमेट का भी देखना है और हमने फ्यूचर का भी देखना है। ये नहीं कि पूरे शहर को आप एक पार्किंग ही पार्किंग करते हैं, लेकिन जो एक जरूरत है उसके तहत तो यार करे ना। और इतनी महंगी आप लोगों ने यहाँ पार्किंग कर दी है कोपेनहेगन कम्यून में, इसको जरा आप सस्ता करें। तो इस पर बहरहाल डिबेट होगी, ये हमने तलब की है, और मैं अभी थोड़ी देर में प्रेस
1: सिकंदर ये
0: रिलीज
1: भी
0: जारी
1: ज़रा
0: करने
1: पता
0: जा रहा हूँ।
1: कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक की पार्किंग बाहर लगी होती है, जो उन्होंने वो डंडे खड़े किए होते हैं, ये तो पैसा कमाने वाले होते हैं या कम्यून के डंडे हैं सारे ये?
0: ये कम्यून के भी होते हैं, ये कम्यून के भी होते हैं, लेकिन देखे ना वो अक्सर खाली खड़े रहते हैं ना। अब रात को मिसाल के तौर पर आप वेस्टर्न पे रह रहे हैं, रात को आप शाम को घर आए फैमिली के
1: वो
0: साथ
1: सारे खाली
0: कहीं से,
1: होते
0: हाँ
1: हैं।
0: अब आपको पार्किंग नहीं मिलती और आगे आपके आगे 10 पार्किंग इस तरह फ्री होती है, वो खाली पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी गलती है सिस्टम में जो ये पार्किंग जो है वो सही नहीं कर सके। और मैं ये समझता हूँ इसलिए है कि इन्होंने अपने अपने स्टैंड लिए हुए हैं, आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिए हुए हैं, जहाँ लेफ्ट विंग पार्टी जो कहती है नहीं सारी पार्किंग खत्म करो हर तरफ पार्क बनाओ, और जो राइट विंग है वो कहती है नहीं सारे पार्क खत्म करो मतलब एक खौफ साग और हर तरफ ही पार्किंग बनाओ। हम कहते हैं कि नहीं, जहां जिनको जरूरत है उनके लिए सहूलतें होनी चाहिए। और ये जिन लोगों ने फ्रीचर्स गाड़ियां रखी हुई हैं, ये जो अमीर लोग हैं कोपेनहेगन में जिन्होंने फ्रीचर्स गाड़ियां रखी हुई, सबका नाटक बंद किया, इनके ऊपर आप सख्ती करो, इनके आप पैसे बढ़ाओ। ये भी आप कानून इजाजत नहीं देता, कोपेनहेगन की जो सेल्स टू अलाउ है वो इजाजत नहीं देता। ये सारी चीजें मैं इनसे बात करूंगा और इनसे सवाल जवाब करूंगा, और इसको हम इसकी हम तय में जाएंगे, और इसको हम भरपूर जो है ना इसमें हम फोकस करेंगे। और मैं अभी कुछ ही देर में भी ये आपसे बात खत्म करके तो मैं अभी प्रेस रिलीज जारी करने लगा हूँ, जो कि आप अखबार में देखेंगे, जहां पे मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो तो लेफ्ट विंग पार्टीज है जिन्होंने वर्किंग क्लास की रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करनी थी वो इनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इस वजह से ये कोपेनहेगन के हालात पार्किंग के हवाले से खराब हो रहे हैं।
1: सिकंदर बात देखा ना, चूहे होते हैं वो मट्टी को जो है खुरचते रहते हैं खुरचते रहते हैं, तो सियासी तौर पर लोग आपको भी खुरचते रहते हैं।
0: हाँ जी वो देखें वो चीज जो है वो चलती रहती है और चलती रहेगी, और यही बात होगी ना कि जिस दिन फिर लोगों ने ये करना छोड़ दिया तो समझे फिर आप रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये भी एक सियासत में चीज ये साथ चलती
1: सिकंदर
0: रहती है।
1: आखिर में आप डेनिश में क्या मैसेज देंगे?
0: देखे मेयावे कैन सी छे एले इक्विब्राउंस खमून तेन उल बेकिंग भी हसे तिसीस ते मांगो तेन फफाइल उपखेंग्स फुलिचिक भी हसे तिसीस ते मांगो तेन हाँ ती निगे छू कॉन्सिक्वेंस आ सैलिस फॉर आप आरक्लेस सैलिस फॉर देम ता हाँ मिनिस्ट सैलिस फॉर फंक्शनिस्ट सैलिस फॉर फॉर फॉर फॉर देम मिड हैंडीकैप और ती एन उल फोर्टिंग फॉर दिया से आ इक्विब्राउंस खमून अताया दी है छो लाया तू हाथ ने छपले दा विनिस्ता फ्लॉय पर दिन सिद ता इतियोलोग सेट पावे नødelægge alle parkeringer, fordi man taler ind i en bogdagsorden, man taler ind i en dagsorden i forhold til klima, fordi det akademikeren vil have. På den anden side, så ser du, hvad hedder det, højrefløjen, som vil plastre hele byen til med parkeringspladser. Den sunde fornuft er simpelthen forsvundet i den her debat. Og det er der, vi i Frie Grønne siger, at vi vil indtage den position, der hedder, at dem, der har fritidsbilerne, og her taler jeg om de rige, velhavende akademikere, der har lejligheder på Indre Vesterbro, Indre Nørrebro, Indre Østerbro, med en kassecykel til 50.000, naturvin i glasene, og en fritidsbil, de bruger en gang om måneden for at komme på i sommerhus. Det er dem, der er udfordringen her. Det er ikke arbejderen. Det er ikke Lonnie, som er socioassistent og kommer hjem efter en lang nattevagt. Det er ikke Mustafa, som er produktionsmedarbejder, som kommer hjem på skæve tidspunkter og døgnet ikke kan finde en parkering. Det er ikke dem, der skal belastes. Jeg mener, det er fritidsbilismen, der skal ud af byen, og det er nødvendighedsbilismen, som skal forblive, og det er dem, man skal arbejde for at få en retfærdig og ordentlig parkering. Jeg mener personligt, Frie Grønne mener personligt, at det er en forfejlet parkeringspolitik, som ikke har været retfærdig og har haft negative konsekvenser for arbejderklassen. Og det er det, jeg har indkaldt vores teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, som er chef for området, for at spørge hende om, hun mener, at parkeringen har haft utilsigtede konsekvenser, og hvad vi kan gøre for at rette op på den her mange års forfejlede parkeringspolitik. Tak for ordet.
1: Sikandar, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया है.
0: शुक्रिया जी.
1: सामाई नाज़रीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक के जो कि कोपेनहेगन कम्यून के बारे में बता रहे थे. सामाई नाज़रीन, आपके मुतालबात हम अक्सर जो है वो लीडरान से मिलते हैं, जो कम्यूनिटी के लोकल मसाइल होते हैं हम शेयर करते रहते हैं. पार्किंग का मसला है, जेन्युइन मसला है, कोई इस पर बोलता नहीं है. बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहर के अंदर होती हैं, स्पीड उनकी 20-30 तक रखी हुई है, 40 तक मैक्सिमम रखी हुई है, लेकिन गाड़ियों की स्पीड जो है वो 250 तक होती है, मीटर में 200 तक होती है. बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप जाकर देख लें, ये जो कोनों में घरों में कोनों के पास पार्क बने होते हैं ना, सबसे ज्यादा ये बार बने होते हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं गाड़ी पार्क करके और यहाँ बैठ के जो है, जाहिर है उनका एक ट्रेडिशन है, कल्चर वाइज जो है बियर पीना, कोला पीना, सोडा वाटर, डांस करना. तो ये टाइम की भी पाबंदी नहीं करते, हालांकि बिल्डिंग के टाइम होते हैं 10 बजे के बाद हर चीज़ को क्लोज कर दिया जाए. ये अंदर से बाहर से कुर्सियाँ उठा के कमरों में अंदर ले जाते हैं और उसके बाद वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं. जिस तरह मलिक सिकंदर सदीक जिक्र कर रहे थे, कोई बंदा काम करके आता है तो उसके लिए पार्किंग नहीं होती, कोई इनवैलिड होता है उसके लिए आता है पार्किंग नहीं होती. तो इनवैलिड की जो पार्किंग एक होती है, इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की पार्किंग जो फ्री पड़ी होती है. तो समय नाजी खुद भी आप इस पर नज़र रखा करें, कम्यून के मेम्बरान से आप खुद भी डिस्कस किया करें. समय नाजी हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान सामे नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 14/5/2026 का प्रोग्राम है, शाम के 8 बज चुके हैं। समय हम आपको खबरें देते हैं, देते रहते हैं। हमारे जो साथी होते हैं, तजिया नगार होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो अपना टाइम निकाल कर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। वो भी अपना हिस्सा डालते हैं कम्युनिटी में कि लाजमी है कम सियासत करें तो तब अपना हिस्सा डालें। जो लोग 12 महीने अपना कम्युनिटी में हिस्सा डालते हैं तो आपको भी उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे तजिया नगार एक्टिविस्ट अदनान अमीन अली हमारे साथ मौजूद है। अदनान, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपकी आवाज पर।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, कैसे हैं राजा साहब आप? सारे व्यूअर्स को अस्सलाम।
1: अल्लाह का शुक्र है अदनान, आप बताएं। मौसम तो आज गर्म था, ठंडा भी था, हवा भी चल रही थी, तो क्या खबरें हैं, क्या कुमती खबरें हैं? हुकूमत बनने जा रही है या लोगों को निकाला जा रहा है?
2: राजा साहब, खबरें तो काफी हैं, हुकूमत के बारे में भी काफी खबरें हैं। वो नेगोशिएशन, जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते कॉन्गली ओनर से एक नया आया था और वो अपनी कीमत आगे लेके जा रहा है, तो हम देखते हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज ये शाम को आई थी और अल्लाह ताला उसको सेहत दे के, हमारी जो फॉर्मर क्वीन थी वो जरा बीमार हो गई है, उसको दिल का कुछ हुआ है, तो वो अब अस्पताल लाजिंग है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसको कहते हैं तंदुरुस्त करे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी आज शाम को, तो आप देखते हैं अल्लाह ताला उसको सेहत दे। हमारे लिए तो वो क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी क्वीन रही थी डेनमार्क की, और जितना साल उसने क्या कहते हैं
1: जिससे हर तबके के लोग प्यार करते हैं।
2: राजा साहब, मैंने ऐसी क्वीन तो देखी नहीं है, और अल्लाह का शुक्र ये है कि जो चीजें उसमें थी वो उसने अपने बेटे को भी आगे दी है। बेटा भी उसी तरह है और अल्लाह ताला क्या कहते हैं दे के वो चल रहे आगे, और अब उस पर जिम्मेदारी तो इस वक्त है ना, क्योंकि वो तो किंग है और अब वो ही तो है जिसने लीड, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, पॉलिटिकल तो प्राइम मिनिस्टर ने सारा मुल्क को चलाना होता है, सारी चीज को लेके आगे जाना होता है, मगर पिक तो उसने ही कराने होते हैं ना कि कौन कॉमली होना से बनने पे स्टेट मिनिस्टर के साथ मिलके। तो अभी ये शाम को चौंसलोर फॉल्स ने कहा है कि तीन पार्टियां हैं जिनको मैं नहीं दोबारा बुलाऊंगा, उसमें एक है इंग्स लिस्ट है और एक SF है और एक एल चाइना ची हुआ है, तो वही देखा जाए तो वही सबको शुरू से पता था कि वो रेड ब्लॉक की पार्टीज हैं, तो उनको तो नहीं बुलाएगा। अब बाकी की पार्टियों को लेके आगे जाने की कोशिश करेगा और वो भी मुश्किल ही लग रहा है कि वो मुश्किल होगा काफी, क्योंकि मौत मिसेस में जो है ना वो काफी जिद पड़ा हुआ है। उसने कहा है कल जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसमें, इसने यही कहा था कि खाली इकोनॉमी फुल चीक पे आप ना रहे, आप पूछ लेंगे फुल चीक पे में आए, और जब वो ऊल लेंगे फुल चीक पे आएगा तो उसके अंदर वो ये भी रहना चाहते हैं कि जो ऊल स्पीच था ना उसको बंदा स्कैनर करे ना खत्म ही कर दे, और उधर जो लास्ट लू के है वो उसको बताना चाहता है। तो फिर राजा साहब आप देख लेना कि क्लैश तो आ गया पहले ही, तो अब वो क्लैश की वजह से क्या है कि ये मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि ये शायद 2-4 दिन अगले जो नेगोशिएशन में ये क्लॉप सी ना हो जाए तो दोबारा वापस जाना पड़े कॉम के पास और तीसरी गोलते करनी पड़े।
1: तो ये क्या कभी ऐसे हो सकता है कि ये जो तीन पार्टियों को नहीं ले रहा तो उसमें सोशल डेमोक्रेट इन तीन पार्टियों को छोड़कर चली जाएगी?
2: अरे साहब, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आप और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल एक ओपिनियन आई थी जिसके अंदर SF 20-23 मंथ ले रही थी और सुशैल तमकत्सु पर पीछे जा रही थी, तो इसलिए सुशैल तमकत्सु को पता है कि वो इस गवर्नमेंट में चले गए तो SF और उनकी सीटें ले जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हुकूमत में जाएंगे, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सोचेंगे फिर हम पिछो में चले जाएं, और वो पिछो में चले गए तो ये गवर्नमेंट बनी तो आप समझे कि नेक्स्ट समर तक दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चल नहीं सकते, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सिनेरियो यही आना है कि रेड ब्लॉक जो है ना वो किधर ये गेम ना खेल जाए कि वो अपनी गवर्नमेंट पेश कर दें लास्ट लोके का बैग ही। तो वही मैंने जो आप पिछले प्रोग्राम में सूरत हाल बताई थी कि फिर एक तरफ 87 हो जाएंगे, एक तरफ 84 हो जाएंगे, और ये सूरत हाल मैंने किसी ने सुनी नहीं है हिस्ट्री में, हुई हो पहले। तो
1: क्या
2: कमी हुई
1: मिला
2: है।
1: लास्ट ल्यूके को जो अब इतनी अफरा तफरी जो सियासी पड़ी हुई है, हुकूमत बन नहीं रही और जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जा रही है, तो इससे डेफिनेट जो है इसका तासर कोई इतना अच्छा तो नहीं जाता या जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया?
2: नहीं राजा साहब वो तो नहीं जाता, क्योंकि राजा साहब ये देखे ना, इसमें यही है कि बंदा देखे ना 70 से लेके तो आज तक और पिछले हिस्ट्री बंदा देखे, तो ये बड़ी अजीब चीज है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। क्योंकि जैसे अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्कूल फॉल्स कह रहे कि हमने इकोनॉमी पॉलिसी पे ही पहले स्टार्ट करना है, मगर कल जब वो आएगा मौत में तो स्मिथ कल ही आना है उसने, और देखिएगा कि टेबल में मार दी, सॉरी हफ्ते को आएगा वो, कल आएगा, मुझे अब याद नहीं कि किस तरह इसने मीटिंग रखी है, मगर नेक्स्ट टू टू डे टू थ्री डेज में सारी पार्टी ने आना है, तो वो आएगा तो वो कहेगा कि मैंने विलियनिंग पॉलिसी पे बात करनी है, तो होगी ना फड्डा पड़ गया, क्योंकि वो इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं, ये विलियनिंग पॉलिसी पे बात करना चाहते हैं, तो पड़ गया ना क्या कहते हैं मसला, कैसे आगे जाएंगे ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही। लास्ट लोगों का ये था कि मैं प्रेशर करके अपनी मीरा का गैंग बना लूं और मैं वाह वाह वाह कर लूं क्योंकि मेरा है, मगर लास्ट में को ये भी सोचना चाहिए कि मैं नहीं होता, ये पार्लियामेंट ऐसी बन गई है कि इसमें सबको क्या कहते हैं कुछ के गिवन एंड टेकन है, एक ये नहीं कि तुम दरख्त में चढ़े रहो तो तुम नीचे ना हो, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है कि मना निगोशिंग करता हो तो कह रहे यही कहे कि मैंने खाली खाऊंगा
1: सारे आप मेरे टोकरे में
2: खाऊंगा
1: डाल दो।
2: यानी कि मैं खाऊंगा उससे बात करूंगा, ये नहीं होता। लास्ट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सुशील तुम कुछ इतनी पागल नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे फर्स्ट ने वो पार्टी को भी जवाब देना है, और जब वो 3 इलेक्शन हार के आई हुई है तो फिर उसने भी सोच समझ के करना है कि उसने क्या करना है, तो इसीलिए मैं व्यूअर्स को सबको कहूंगा कि ये बड़ा मुश्किल है, और जो पहले दिन से बातें चल रही हैं पहले दिन से एनालिसिस हो रहा है, ये सजा होती आएगी खोंग की, ये मुझे लगता है जल्दी आएगी नेक्स्ट वीक अंदर अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये नहीं ये मुश्किल है कि ये आगे जा सके।
1: दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे थे कि केस चल रहा था कोई पर्दे के हवाले से, हाथ मिलाने के हवाले से स्कूलों का या कॉलेज का, जरा वजात कर दे क्या केस है ये?
2: हाँ एक वाक्य हुआ था 2019 में जिसका मीडिया में और फेसबुक पे बड़े लोगों ने लिखा है, वो ये था कि दो पक्षी कहन थे वो एमिसलन में आए थे पक्षी के लिए, और दो थे और उनमें से एक ने दोनों ने फिर केस शुरू में लड़ा, वो ये हुआ था कि फिर उनने उनका वायल हुआ था पक्षी का वायल हुआ, उसको उनने कहा था कि हमने हाथ नहीं मिलाना, और उसके बाद फिर जो स्कूल की लीडरशिप थी ना इंस्पेक्टर उसने बुला के कहा था कि आप हाथ मिलाएं या आपका हम कांटेक्ट कैंसिल कर देंगे जो आपकी पक्षी के, तो वो उसने फिर क्या कहते हैं वो वाकया हो गया था। फिर ये हुआ था कि लीज थिंग्स ने उन्होंने मिल के ना केस लड़ा था स्कूल के खिलाफ भी, और उन्हें एक किस्म का कमोन तक केस डाल दिया था लीज थिंग्स ने उन्होंने, और उन्होंने कह दिया था कि ये गलत है ये इनको ऐसे नहीं तो करना चाहिए, और दोनों फीमेल जिनने केस डाला था उनके हक में केस दे दिया था। एमसन कमून ने यह डिसीशन नहीं थी एक्सेप्ट की, वो हाई कोर्ट में चले गए थे, हाई कोर्ट में ने कहा था कि वो लड़कियां गलत हैं और जो 25,000 उनको मिला हुआ था कि स्टेट नहीं लीज थिंग्स ने उनमें वो उन्हें डिसमिस कर दिया था। इनमें से पे एक फीमेल थी जिसने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में फिर 7 जज बैठे हैं जिनमें से 6 ने कहा है कि हाथ देने पे बंदा जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर स्ट्रेटनिंग नहीं दी, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि एम्सलोन को मून के उसके अंदर कोई नहीं है, वो स्कूल की गलती थी, मगर इस केस का फैसला ये है कि आप किसी को जबरदस्ती हाथ देने से मजबूर नहीं कर सकते, और ये एक प्रिंसिपल बना है जिस पे बहुत सारा डिबेट चला है फेसबुक पे, क्योंकि टेंस फॉल का पच्ची वाले कुछ के मेंबर्स ने लिखा है और कुछ और लोगों ने लिखा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसमें हमारे मेयर ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि जो हो गया वो हो गया मगर बंदा मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखे ना जब कोरोना हुआ था तो उस वक्त भी तो लोगों ने मना कर दिया था ना हाथ देना, तो ये बात तो फिर गलत है ना कि आप जबरदस्ती तो किसी से नहीं ना कर सकते कि कोई बंदा हाथ देना चाहता है कि नहीं, तो इस फैसले से यही बनता है कि बंदा आगे से ध्यान करेगा कि किसी से जबरदस्ती नहीं बंदा कर सकता।
1: عدنان، آج آپ کے علاقے میں جو ہے کہ ایک بڑی فیسٹ تھی، کافی لوگ تھے، کافی تعداد میں خواتین اور بچے بھی تھے، تو اس میں میری ملاقات ہوئی اپنا کیا نام ہے جو آپ کے ڈپٹی میئر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ زہیر سے ملاقات ہوئی، عرفان گیلانی سے ملاقات ہوئی، اور بھی شاید کوئی تھے جو ہے، تو اس کے علاوہ بھی بڑے لوگ تھے، تو میں نے نہیں دیکھا، شاید آپ مصروف تھے کہیں.
2: نہیں میں آیا تھا،
1: آپ کے سابقہ جو ہے میئر تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی.
2: ہاں لاسٹ کاؤ کاؤ جو ہے میں آیا تھا شروع میں، اور میں شروع میں آیا تھا اور میں شروع کے بعد نکل گیا تھا، وہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے کیا کہتے ہیں روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ میری کوئی اور مصروفیت ہو گئی تھی تو میں وہاں چلا گیا تھا، مگر میں وہاں آیا تھا اور ہو کے گیا ہوں. وہ مسجد والوں نے ایک کیا کہتے ہیں میسے بنایا، اچھی بات ہے، اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے اور کمیونٹی کے لیے کیا کہتے ہیں جتنے زیادہ پروگرام کریں گے اتنا ہی کیا کہتے ہیں بہتر ہوگا ہمارے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پروگرام جو ہوتے ہیں یہ، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس وقت بڑے ٹارگٹ میں ہیں، تو بہتر بات یہ ہے کہ ہم جتنے میئر ہوتے ہیں کمونوں کے ان کو بلائیں پروگرامس میں، ان کو کیا کہتے ہیں انویٹیشنس دیں، ان کو انوائٹ کریں. جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ 23 مئی کو ہم لوگ یہاں پہ مینا بازار کریں گے جس کو ہم کہہ رہے ہیں بقرا عید، اور اس پہ بھی ہم نے انوائٹس کیا ہوا ہے. اور میں پیورس کو یہ بھی کہہ دوں کہ پاکستانی امبیسی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی ہے، اور اس کے ساتھ اور امبیسی والے بھی آ رہے ہیں اس پروگرام میں. تو یہی کلچرلی انوینٹس ہوں گے جس سے ہم اپنے آپ کو پرووائڈ کر سکیں گے اور ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم کیا ہیں. کیونکہ راجہ صاحب ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اور بڑے لوگوں نے، میں جب آج وہاں پروگرام میں گیا ہوں بڑے لوگوں نے مجھے یہ سوال کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اور آواز بھی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ بنے گا. اور اس کو میں نے کہا دیکھیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہمیں پتا تھا کہ اس سال کے الیکشن کے مین ایشوز کیا آنے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دو دن میں کرتے ہیں، یہ ہماری بہت عرصے کی تیاری ہوتی ہے اور یہ ہم پورا دیکھ کے چلتے ہیں کہ کیسے ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کمنگ ڈیز میں مجھے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ میں خود اس وقت سوچ رہا ہوں کہ نیکسٹ میرا قدم کیا ہونے والا کیا نہیں ہونا، اور اس پہ میرا بڑا ٹائم لگ رہا ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں مصروفیت دوسری طرف ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو فیوچر کے لیے ہیں اور ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کمنگ ڈے میں ان پہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا.
1: مطلب دھماکہ تو نہیں ہونے جا رہا؟
2: نہیں دھماکہ تو نہیں ہم کریں گے ابھی، کیونکہ دھماکے کافی ہو چکے ہیں اس سال، اور 4-5 مہینے سے ہو رہے ہیں، تو اب تھوڑا کیا کہتے ہیں سمر بھی آ رہا ہے، تو سمر ویکیشن ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں گے کہ کیا اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے. یہ تو اب ڈسائڈ تو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے نا کہ بندے نے سوچ سمجھ کے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس وقت تو ہمارے کچھ ٹف فیصلے آنے ہیں کمیون کے اندر بھی، تو ان پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے.
1: عدنان، آخر میں آپ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو، اپنی پبلک کو، سیاستدانوں کو، کمیونز کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟
2: میں یہی کہوں گا کہ ہم جتنا کام مل جل کے کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اتنی ہمارے لیے فائدہ ہے. ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم ایسا دیں کہ ہمارے بچے دیکھیں اور ہمیں فالو کریں اور اس چیز پہ چلیں. جیسے میری کل بچی 9ویں کلاس ختم ہوئی ہے، اب ووکیشن میں جا رہی ہے، تو وہ جب دیکھتی ہے نا کہ ایک پلیٹ فارم آگے آ رہا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے. اسی طرح میں کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں اور سب کے لیے رول ماڈل بنیں.
1: عدنان آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے سنڈے کو بھی بات ہوگی
2: انشاءاللہ تعالیٰ پہ. ٹھیک ہے رضا صاحب،
1: خدا حافظ. سمن ناظرین، یہ تھے عدنان امین علی جو آپ کو تازہ ترین معلومات دے رہے تھے، اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی آپ کو بہت سارے اشارے جو انہوں نے کر دیے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سامعین ناظرین، ہمارا کام انفارمیشن دینا، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।